अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: श्री रामलला भगवान की
1: जय।
0: श्री हनुमान जी महाराज की
1: जय।
0: जय श्री राम,
1: जय श्री राम,
0: जय श्री राम,
1: जय श्री राम,
0: जय जय श्री राम,
1: जय श्री राम।
0: नमः पार्वती पतये हर हर।

श्री गोविंद गीता अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। श्री कृष्ण कहते हैं कि सृष्टि निर्माता ब्रह्म की योनि को मैं ही गर्भस्थ करता हूँ एवं विविध प्रकृति गुणों के प्रभाव से अव्यय जीव इस भौतिक देह को धारण करते हैं।

श्री भगवान कहते हैं कि निर्मल प्रकाशक सत्वगुण पापों से मुक्त करता है, जबकि रजोगुण राग वैतृष्णा तथा तमोगुण आलस्य एवं प्रमाद उपजाता है। जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में किसी एक गुण की प्रधानता के कारण देहधारी के कर्म स्वभाव एवं अंतगति में परिवर्तन होते हैं।

श्री गोविंद कहते हैं कि इन तीन गुणों को पार करने वाला नर ही मोक्ष का अधिकारी बनता है। श्री भगवान ऐसे त्रिगुणातीत के लक्षणों का वर्णन करते हैं।

0: पूर्वजा भगिनी चापि मम राघव सुव्रता नामना सत्यवती नाम ऋचि के प्रतिपादिता सशरीरा गता स्वर्गम भर्तारम वर्तिनी कौशिकी परमोदारा प्रवृत्ता च महानदी।
1: वाल्मीकि रामायण अनुसार मुनि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को अपनी बड़ी बहन सत्यवती की कथा सुनाई थी कि अपने पति के स्वर्ग सिधारने के साथ सत्यवती पति का अनुगमन करती सशरीर स्वर्ग गई और वह कौशिकी नामक नदी के रूप में परिणत हो गई। कालांतर में वही कौशिकी कोसी कहलाई।
2: सप्त सिंधु, सप्त गोदावरण, सप्त गंगम और सप्त गंडकी की तरह कौशिकी भी सप्त कौशिकी है। इनमें इंद्रावती, सुनकोसी, तामकोसी, लिक्षकोसी, दूधकोसी, अरुणकोसी और तमोरकोसी। इन सप्त कौशिकी की धाराओं का क्षेत्र पश्चिम पूर्व 264 किलोमीटर और दक्षिण उत्तर 160 किलोमीटर तक फैला है।
3: विनोद जी, तो ये सातों नदियाँ यानी धाराएं हिमालय के उच्च शिखरों से उतरी हैं।
2: तमोर का उद्गम कंचनजंघा, तामाकोसी का गौरीशंकर, दूधकोसी का उद्गम मकालू शिखर, अरुणकोसी की कुछ सहायिकाओं का उद्गम सागर माथा यानी
3: एवरेस्ट शिखर, संसार के शिखरों में सर्वोच्च।
2: शोभा जी, वैसे बड़ी प्रवाह धारा तो अरुणकोसी की है, फिर भी कोसी सुनकोसी यानी स्वर्ण कोसी की ही धारा मानी जाती है। यह स्वर्ण कोसी तिब्बत से उतरती है, त्रिवेणी के पास सातों कोसी मिलकर महाकोसी कहलाती है, एक हो जाती है।
3: लेकिन विनोद जी, हमें वराह क्षेत्र के लिए प्रस्थान करना है, नाव इंतजार कर रही है।
2: हाँ, देख रही है ना, प्रवाह के विरुद्ध हम आगे बढ़ रहे हैं।
3: जी नहीं, हमारी नाव आगे बढ़ रही है। और विनोद जी, फिर वो युवा क्या जो प्रवाह के विरुद्ध आगे न बढ़ सके?
2: जी हाँ, कोसी के दोनों किनारों के प्राकृतिक दृश्य तो देखिए, कितना मनभावन है। और जानती हैं शोभा जी, वराह पुराण अनुसार सप्त कोशी क्षेत्र 21 तीर्थों का स्थान माना गया है।
3: 21 तीर्थ?
2: जैसे जल बिंदु, विष्णुधारा, अग्निसर, ब्रह्मसर, विष्णुसर, मत्स्य शिला, विष्णुपद आदि। विष्णुधारा वही कोका मुख है और विष्णुपद पास ही तो है। कहते हैं यही वराह भगवान ने पाताल से पृथ्वी को लाया था।
3: वो वहाँ वराह मंदिर।
4: यो बराह क्षेत्र हो, यहाँ धेरै टाढा टाढाबाट दर्शन गर्न मानिसहरू आउँछन्।
2: महाकोशी के बाएं तट पर ही वराह क्षेत्र और कोकामुख दो तीर्थ हैं। इनकी चर्चा तो महाभारत में भी आई है।
0: कोकामुखे विगाह्याथ गत्वा चांचलिकाश्रमा शाखभक्षास चीरवासा कुमारी निंदते दशा।
2: शोभा जी, सप्त कौशिकी की धाराएं मानो सप्त लोक के प्रतीक सात स्वर्ग मार्ग हैं, जो वस्तुतः स्वर्ग से उतरते हैं। यहाँ से यानी वराह क्षेत्र से नीचे मुनि विश्वामित्र का आश्रम कुशहा है, उनकी तपोभूमि।
3: क्यों नहीं, ये स्थान ही साधना और तप के योग्य है। लेकिन विनोद जी, एक बात समझ में नहीं आई, कोसी जैसा जल प्लावन का दृश्य, बाढ़, कटाव, इतनी तबाही अन्य बड़ी नदियों में नहीं दिखती है।
2: ये जान लीजिए कि नवंबर माह में कोसी का जल निकास 18,000 घनफुट प्रति सेकंड, किंतु वर्षा काल में 3,00,000 घनफुट प्रति सेकंड देखा गया है। इस क्षेत्र में वर्षाकालीन बाढ़ की ऊंचाई अन्य दिनों की साधारण सतह से 40 फीट तक की ऊंचाई बढ़ जाती है, किंतु 1927 की बाढ़ में 56 फीट ऊंचाई बढ़ गई थी। इस तरह इस बाढ़ का निकास 7,00,000 घनफुट प्रति सेकंड बढ़ गया था।
3: मगर इतनी तेज रफ्तार और इतना अधिक पानी।
2: गंगा नदी का उद्गम समुद्र सतह से 10,300 फीट ऊंचा है, सिंधु का उद्गम 16,000 फीट, मगर कोसी का उद्गम समुद्र सतह से 18,000 फीट ऊंचा है। इसके अलावा सप्त कौशिकी के हिमालय क्षेत्र में 170 इंच वर्षा होती है, फिर हजारों वर्ग किलोमीटर ग्लेशियर का और हजारों वर्ग किलोमीटर वर्षा का पानी समेट कर धाराएं त्रिवेणी पहुंचती हैं।
3: ओह, तभी तो।
2: और कोसी की प्रत्येक धारा दो पर्वतों की तंग दरार से बहती उतरती है। वर्षा काल में जल प्रवाह की गति प्रति घंटा लगभग 25 किलोमीटर है।
3: विनोद जी, तीव्र धारा के कारण ही कोसी गांव बस्तियों को उजाड़ती, जहां तहां ताल तलैया खोद देती थी। कहीं कहीं तो 60-70 फीट गहरे कुंड जैसा। जानते हैं, मेरे मामा जी कहते हैं कि ये ताल तलैया उन्हें लखपति बनाते थे।
2: लेकिन मछली के सिवा क्या उपजा पाते होंगे मामा जी?
3: मखान यानी मखाना, चाय के साथ नाश्ते में या खीर बनाकर, जैसे भी खाइए। 80-85 रुपए प्रति किलो मखान। फिर खेतों में जूट, तंबाकू देश विदेश में बेचकर लाखों रुपए कमाते हैं व्यापारी लोग।
2: ये एक बात हुई, लेकिन गड्ढों में जहाँ जल जमा हो जाता था वहाँ मच्छरों का उपनिवेश बस जाता था, फिर मलेरिया, कालाजार, पीली यानी पेट निकल जाने वाली बीमारियों का गढ़। इनके अलावा बालू का टीला बना देना, मीलों तक उर्वर भूमि को वीरान बना देना कोसी के बाएं हाथ का खेल था।
3: मैं मानती हूँ कोसी सब में आगे रही है, उद्गम स्थान की ऊंचाई में सर्वोच्च, वर्षा में अपूर्व, तो तीव्र धारा द्वारा उजाड़ने में, बालू भर देने में भी प्रथम।
2: कोसी का ये निर्मम खेल 100-200 सालों से ही नहीं बल्कि हजारों सालों से जारी है। सन 1300 ईस्वी के लगभग मिथिला भूमि के रक्षार्थ कोसी को रोकने के लिए एक विशाल बांध बांधा गया था। 80 से 100 फीट चौड़ा, 20 से 30 फुट तक ऊंचा और 80 किलोमीटर तक लंबा। कहते हैं मिथिला के शासक हरि सिंह के मंत्री वीरेश्वर ने बनवाया था। उसी के नाम पर बांध का नाम वीर बांध था। ये पश्चिमी तटबंध था। लगता है समय के थपेड़ों और कोसी की तलवार धार से भी तीव्र चोट से वीर बांध क्षत विक्षत हो गया, किंतु प्रतीत होता है इसकी प्रेरणा से भारत सरकार ने ये भीमनगर स्थित बराज बनाने का निश्चय किया।
3: सच, कोई 700 साल पूर्व इतने विशाल बांध का निर्माण, ऐसा मनुष्य? भैसा संग मनुसुबा के बहनों, बजर सन गात है।
2: ये तो लोकगीत है, जरा खुलकर तो सुनाइए।

0: शोभा जी, प्राचीन पुण्य तीर्थों के दर्शन श्रवण और मनन तो आपने कर लिए जी, नवयुग का नया तीर्थ देखने देश में हीराकुड, भाखड़ा नंगल, मयूराक्षी, दामोदर और कोसी योजना का निर्माण योजना अनुसार हुआ था, तो हम नीचे उतरे कोसी बराज को देखने निहारने।
1: विनोद जी, त्रिवेणी संगम से चतरा लगभग 9 किलोमीटर की दूरी तय करती कोसी नीचे उतरती थी और फिर यत्र तत्र कोसी अपनी धाराओं को बिखेर देती थी, तबाही मचा देती थी।
2: सन 1900

0: 1951 जुलाई के आखिरी सप्ताह में कोसी की बाढ़ संपूर्ण सहरसा का सर्वनाश करने लगी तो 20 अगस्त को हमारे प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू ने बाढ़ क्षेत्रों का निरीक्षण किया और कोसी को बांधने, उसे नियंत्रित करने का निश्चय किया।
1: कोसी नदी नेपाल स्थित वराह क्षेत्र, कुसहा और चतरा स्थानों से होती हुई भारत में बिहार के सहरसा जिला अंतर्गत वीरपुर और भीमनगर स्थानों पर उतरती है।
2: भारदा यानी भारदह नेपाल राज्य का गांव है। यह भीमनगर से पश्चिम 8 किलोमीटर दूर कोसी के दाहिने तटबंध पर बसा है। यह निर्मली से 41 किलोमीटर, कुनौली से 16 किलोमीटर पूर्वोत्तर कोण में है।
0: इसी भारदा में बराज बनाने की योजना स्वीकृत हुई। बराज का प्राथमिक कार्य 14 जनवरी 1955 को प्रारंभ हुआ और बराज लगभग 4 वर्षों में पूरा हो गया। 1963 के 31 मार्च को कोसी की धारा मोड़कर बराज के विवर द्वार में बहा दी गई, जिसका विधिवत उद्घाटन 24 अप्रैल 1965 को नेपाल नरेश द्वारा संपन्न हुआ।
1: कोसी क्षेत्र के निवासियों ने श्योक नदी कोसी के उत्पीड़न से मुक्ति की सांस ली, नए जीवन की शुरुआत हुई।
2: 1954 में कोसी में भयानक बाढ़ आई थी, जिसका प्रतिक्षण जल रिसाव 8,55,000 घनफुट था। तदनुसार जल निस्सरण की गति प्रति सेकंड 9.5 लाख घनफुट थी। अतः बराज में 56 जल द्वार बनाए गए।
1: सहरसा और पूर्णिया जिलों में बहने वाली कोसी की पूर्वी नहर बराज के नियंत्रण गृह से सटे दाहिनी ओर से निकाली गई है। कोसी की यह पूर्वी मुख्य नहर 7 जल विवर द्वारों से बहाई गई है।
0: इसका प्रत्येक विवर द्वार 40 फीट चौड़ा है और नहर अपने उद्गम स्थान पर 360 फीट चौड़ी है। इस पूर्वी नहर की लंबाई लगभग 41 किलोमीटर है, जिससे 5 बड़ी शाखा नहरें निकाली गई हैं। फिर इन 5ों से बहुत सी नहरें निकली हैं।
1: यदि पूर्वी मुख्य नहर के साथ इनके द्वारा बहाई गई तमाम नहरों की लंबाई नापी जाए तो कुल मिलाकर 3020 किलोमीटर होगी।
2: पूर्वी और पश्चिमी तटबंध का कार्य बराज निर्माण के साथ 1955 में आरंभ होकर दोनों ओर कोई 120 किलोमीटर लंबा मिट्टी का तटबंध 1959 में पूरा कर लिया गया। इसके निर्माण में जन सहयोग का बड़ा हाथ रहा। भारत सेवक समाज, ग्राम पंचायत, स्कूल कॉलेजों के शिक्षकों, छात्रों ने, दूर दूर के निवासियों ने श्रमदान का अनूठा उदाहरण उपस्थित किया था।
1: श्रमदानियों में मधुबनी जिले के पलवार ग्राम के निवासी 75 वर्षीय श्री घनानंद झा और सहरसा के एक प्रमुख समाज सेवी श्री वैद्यनाथ मेहता आज भी साक्षी हैं। यादों के पन्ने खोल रहे हैं श्री वैद्यनाथ मेहता।
3: जन सहयोग का उपलब्ध यही हुआ कि जमीन लोगों ने स्वतः दिया। आपको तजुब लगेगा कि जिनका घर जिनकी संपत्ति बांध के भीतर में पड़ती थी और अभी है, वो जानते थे कि कोसी के तटबंध हो जाने के बाद कोसी की सारी विभीषिकाएं तटबंध के भीतर में रहेगी, हम बर्बाद हो जाएंगे। तो उन्होंने अपने सर पर मट्टी काट करके जन सहयोग में श्रमदान किया। बांध उसी साल शुरू हो गया, 14 जनवरी 1955 को, और श्री बाबू के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था।
0: पश्चिमी तटबंध बराज के पश्चिमी किनारे पर स्थित भरदा से आरंभ होता है कनौली तक सहरसा जिले में, आगे हरपुर, डगमरा आदि पार करता मधुबनी जिले में प्रवेश करता है।
1: तटबंध के दाहिने किनारे मधुबनी जिले के बाजूबंद बनगांव और भुथा गांव मिलते हैं। वहां से तटबंध निर्मली तक आता है।
4: निर्मली से 12 किलोमीटर पर स्थित डुमरा गांव के निवासी, जहां पहले केवल पटुआ की खेती करते थे, उन्हें पटुआ का साग मयस्सर होता था मड़ुआ की रोटी के साथ, लेकिन अब तो मन चाही फसल उगाने लगे हैं, बाढ़ का कोई डर नहीं। श्री बच्चेलाल मिर्धा एक छोटे किसान के शब्दों में,
5: हमरा सबका अधिकतर धान किछ गरमा किछ जल्ली किछ मरुआ ई फसल हमरा सबका होई है।
1: डुमरा गांव के ही श्री सीभू राउत,
6: धान गहूँ जल्ली गरमा मरुआ ई फसल सब उपजावे छे हमरा का।
0: वहीं पास ही एक बड़ुआर गांव है, बड़ी बस्ती है। आप हैं वहाँ के किसान श्री रामचरित्र पासवान।
7: कोसी बांध भेला से हमरा सबके बहुत सुख सुविधा है। ऐसा पहले हमरा सबके सुगर जानवर ये सब बहुत तंग करी चले है, एकोटा फसल नहीं हुआ दी चले है। जहिया से बांध भेला तहिया से हमरा सबके बहुत सुख सुविधा है।

0: और वो जानवर जिते छले कोटा जानवर आब नहीं एठिने।
1: वही बाजूबंद के पास ही तटबंध पर स्थित विश्वकर्मा मोड़ है। यहाँ के खेतों में कुछ महिलाएं काम कर रही हैं तो कुछ घर जाने के लिए पड़ोसियों का रास्ता देख रही हैं। कोसी गीत मानो रस बस गया है।

0: कोसी बराज और तटबंधों के पहले तथा बाद की स्थिति बताते हुए नेपाल स्थित सप्तरी जिला पंचायत के सभापति श्री सुरेंद्र झा।
1: जब तक कोसी प्रोजेक्ट यहाँ पर नहीं था तो पूरे चतरा से लेकर के और वीरपुर तक पूरा जंगल में और बालू ही बालू था, लेकिन कोसी प्रोजेक्ट के होने से और पश्चिमी तटबंध हो जाने के कारण आज चौतरफी विकास हुआ है और हम लोग काठमांडू काकरभिटा से काठमांडू सीधे पहुंच जाते हैं। ये भारत और नेपाल का प्रतीक जो बैरेज है उससे दोनों देश को ज़्यादा ही ज़्यादा फायदा हुआ है।
0: खेती बाड़ी की चर्चा करते हुए श्री झा बता रहे हैं,
1: पहले तो वही जंगले जंगल और बालू, खास करके लोग पाट उपजाते थे यहाँ भी और इंडिया के सहरसा डिस्ट्रिक्ट में भी यही खेती था, लेकिन कैनाल के चलते आज सब जगह हरियाली हरियाली है, धान में हो गया है और लोग आज कोई भी हो गरीब से गरीब आदमी भी दोनों टाइम चावल खाता है, ये कोसी प्रोजेक्ट का ही देन है।
2: विनोद जी, देख रही हूँ मशीन और मनुष्य ने कोसी की विकराल धारा को सिमट कर बराज के सीमित द्वार से बहने के लिए विवश कर दिया है।
3: शोभा जी, जान लीजिए कि कोसी नहरों और तटबंधों से बिहार के पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा जिलों को बाढ़ सुरक्षा और सिंचाई सुविधा मिली तो नेपाल के अंतर्गत बड़े भूभागों को भी पटवन की सुविधा तथा बाढ़ से सुरक्षा मिली। नेपाल के चतरा, धरान, विराटनगर, दुब्भी, इनरवा और रंगोली आदि क्षेत्रों की लाखों एकड़ जमीन की सिंचाई संभव हुई।
4: भारत सरकार ने चतरा नहर, बिजली घर, अस्पताल, स्कूल, सड़कें आदि निर्माण कर नेपाल को उपहार स्वरूप प्रदान किए
0: और इस प्रकार बिहार और नेपाल के करोड़ों किसानों ने शोक नदी कोसी के उत्पीड़न से मुक्ति की सांस ली।
5: नहर प्रणाली द्वारा सिंचाई सुविधा की चर्चा करते हुए बिहार राज्य के जल संसाधन विभाग के अभियंता प्रमुख श्री राम नरेश प्रसाद सिन्हा,
6: 65 से पूर्वी नहर प्रणाली से सिंचाई की सुविधा भी दी जाने लगी थी और उसके बाद से इस क्षेत्र में जो प्रगति हुई है और इस क्षेत्र का जो कायाकल्प हुआ है इसकी कल्पना केवल वही लोग कर सकते हैं जिन लोगों ने कोसी में शुरू में 1954 से ही काम किया हो। मुझे यह कहने में बड़ा गर्व अनुभव हो रहा है कि मैं उन लोगों में से हूँ जो कि कोसी के शुरुआती दिनों में ही यहाँ आया था।
4: 20-25 वर्षों तक नहरों से समुचित सिंचाई हुई किंतु अब पटवन में बाधा होने लगी और तटबंध टूटने फूटने लगे, कारण बताते हुए अभियंता प्रमुख श्री सिन्हा।
6: जहाँ तक नहरों के सवाल है, नहरों भी की पूर्ण क्षमता के अनुसार सिंचाई उपलब्ध नहीं करा पाई जा रही है। इसमें भी सबसे बड़ी समस्या यही हो रही है कि कोसी नदी में इतना अधिक सिल्ट आता है कि किनाल सब जगह सिल्ट से भर गया है। किनाल, मुख्य नहर, वितरण प्रणाली सभी में सिल्ट का इतना अधिक जमाव हो गया है कि नहरों की जो क्षमता थी वो क्षमता काफ़ी कम हो गई है।
0: कोसी बहुधा 35 वर्षों पर अपनी धारा बदलती रही है, मुख्य कारण मुहाने पर बलुआही मिट्टी का भारी जमाव।
5: जब कभी कोसी ने अपना धारा मार्ग बदला तो तबाही के दिन दिखा दिए, बाढ़ का रोग शोक फैला दिया, फसलों को, गांव बस्तियों को बर्बाद कर दिया।
4: किंतु बराज बना, तटबंध बने, नहरें बनी तो बाढ़ सुरक्षा मिली, लेकिन बलुआही मिट्टी नहीं रुक सकी क्योंकि मिट्टी और कंकड़ियों से निर्मित पहाड़ों के दरमियान कोसी गुजरती उतरती है और संग लाती है बलुआही मिट्टी का अंबार। कोसी योजना मुख्यतः बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से बनी थी और अभी तक योजना कारगर साबित हुई, किंतु कोसी नदी द्वारा सिल्टिंग की समस्या ने पटवन व्यवस्था पर चोट करना शुरू कर दिया है। कोसी की तुलना चीन की वांगो नदी से की गई है जो अपने वेग में हर साल 10 सेंटीमीटर सिल्ट लाती है और चीन के

0: अभियंता प्रत्येक 10 वर्ष पर किनारों को 1 मीटर उठाते रहते हैं, फिर उनका तटबंध भूकंप प्रूफ है।
1: पूर्णिया सिंचाई प्रमंडल के प्रभारी श्री शिवशंकर सिन्हा कोसी नहरों से सिल्ट हटाने की बात के साथ साथ कुछ अन्य उपाय बता रहे हैं।
2: किसान को भी अपने क्रॉप पैटर्न्स, फसल का जो फसल लगाने और बोने का काटने का जो समय है उसको बदलना पड़ेगा। ज्ञातव्य है कि नदी सिल्ट लाती है प्रायः बाढ़ के समय में, असल नहर को उस समय अगर हम लोग बंद कर छोड़ दें और जो वर्षा होती है उससे किसान अपने खेत में फसल लगावें और काटें, और जब नदी में सिल्ट नहीं आता, नदी जब सिल्ट नहीं लाती है उस समय नहर का संचालन करें और वे किसान अपने क्रॉप पैटर्न्स को बदलें और उस समय उस फसल को लगाएं, हाई यील्डिंग बैलेंस की वैरायटी का फसल लगा दें, जैसे केला लगाया जा रहा है और बहुत ऐसा क्रॉप्स है जिसको उस समय लगाया जाता है जिस समय नदी में सिल्ट नहीं आती है, उस समय नहर में हम सिल्ट फ्री वाटर दे सकते हैं।
1: मिस्टर बुकनन एक प्रसिद्ध सर्वेक्षक जिसका समय 1809-1810 रहा है, उसने अपनी पूर्णिया रिपोर्ट में कोसी धाराओं की गतिविधियों का प्रमाणिक ब्यौरा उपस्थित किया है।
0: मिस्टर बुकनन के अनुसार सन 1704 से 1735 तक कोसी सौरा नदी की धारा से मिलकर फारविसगंज, रजोखर, गढ़बनैली, पूर्णिया और कटिहार होकर मनियारी के पास गंगा में मिलती है।
1: 1737 में ये सौरा धार से पश्चिम हट गई। 1770 में ये और पश्चिम खिसकी, सरसी रंगपुरा होते हुए काढ़ा गोला आकर गंगा में गिरने लगी।
3: 1807 से 1838 तक ये धमदाह होते हुए कुरसेला में गंगा से मिलती थी। फिर 1875 से 1892 तक कोसी श्रीपुर, मुरलीगंज और प्रतापगंज होकर कुरसेला में गंगा से संगम करने लगी।
0: 1922 से 1937 तक यह भपटियाही, सुपौल, नौहट्टा और वनगांव होकर बहने लगी। 1951 में भी कोसी यहीं प्रवाहित थी। कोसी युगों से सहरसा और पूर्णिया में बिखरी हुई केश राशि की तरह विविध धाराओं में बटती, मनमाने ढंग से बहती रही। यह भाव लोक जीवन में कीट बनकर फूट पड़ा।

0: सुपौल से पश्चिम होकर आगे दक्षिण में जो दो धाराएं फूटती हैं उनमें पश्चिमी धार का नाम पुरैन है। इसी पुरैन धार के किनारे कई प्राचीन ऐतिहासिक स्थानों के भग्नावशेष आज भी विद्यमान हैं।
1: सुपौल नगर के दक्षिण कर्णपुर स्थान, कहते हैं अंग देश के राजा दानवीर कर्ण का ये कभी प्रसिद्ध नगर था। आगे नौहट्टा मुगल कालीन नगर है।
2: पुरैन धार आगे धरहरा, चंद्रायन और महिषी को छूती बहती थी। महिषी यानी प्राचीन माहिष्मती ग्राम, जहां महान विद्वान मंडन मिश्र और शंकराचार्य का सुप्रसिद्ध शास्त्रार्थ हुआ था।
1: कहते हैं जब शंकराचार्य महिषी यानी माहिष्मती पहुंचे तो उन्होंने एक पनिहारिन से मंडन मिश्र के घर का पता पूछा। पनिहारिन ने संस्कृत में उत्तर दिया,
3: जगत ध्रुवम स्यात् जगदत ध्रुवम स्यात् कीरांगना जत्र गिरो गिरंती द्वारस्थ नीलांतर सन्निरुद्धा जानी ही तन मंडन मिश्र धाम।
0: शंकराचार्य और मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ मंडन मिश्र की पत्नी भारती की मध्यस्थता में हुआ। अंत में मंडन मिश्र ने पराजय स्वीकार ली और शंकराचार्य का शिष्यत्व ग्रहण कर वे सुरेश्वराचार्य नाम से प्रसिद्ध हुए।
1: इसी महिषी ग्राम में रुद्र तारा देवी का एक प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है और पास ही है एक ऐतिहासिक बौद्ध काल की स्मृतियों को समेटे ग्राम वनगांव। मच्छिम निकाय और महाबग्गो के अनुसार भगवान बुद्ध अपनी 1200 शिष्यों के साथ अंग देश से चारिका करते हुए यहाँ पधारे थे। अंगुत्राय

0: का यही आपण निगम है।
1: मिथिला प्राचीन काल से गौरवान्वित रहा है। यहाँ की बालिका बबीता और पुष्पा को वैसे तो देश की तमाम नदियों से प्यार है, किंतु यहाँ के जल से कुछ विशेष लगाव है लोकगीत के स्वर में।

0: पूर्णिया का एक विशेष इतिहास रहा है। कहावत है, जहर खा न माहुर खा, मरना हो तो पूर्णिया जा। निसंदेह पूर्णिया इसे कभी चरितार्थ करता था, किंतु कोसी द्वारा बराबर धारा बदलने के कारण कभी दलदल तो कभी बालू के अंबार लगे, और जब धारा बदली तो फसलों का लहलहाता समुद्र बिहसता दिखा।
1: तभी तो पूर्णिया के विभिन्न मेले सुप्रसिद्ध हैं। फॉरबिसगंज का मेला, गुलाबबाग का मेला, मदनपुर का मेला, खबासपुर का मेला और भी कई मेले जो समृद्धि के प्रतीक थे।
2: साहित्य सर्जना में भी पूर्णिया पीछे नहीं रहा। प्रति परिकथा, मैला आंचल आदि आंचलिक उपन्यासों तथा कथाओं के अमर लेखक स्वर्गीय श्री फणीश्वरनाथ रेणु, नाटककार और कवि स्वर्गीय द्विजदेनी यानी पंडित रामदेनी तिवारी, विद्वान आलोचक और लेखक स्वर्गीय डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु तथा अनूपलाल मंडल सरी के नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेंगे।
1: आज भी साहित्य साधना में निरत पूर्णिया के 80 वर्षीय कवि श्री नारायण वर्मा और 75 वर्षीय श्री तेज नारायण, कमला प्रसाद बेखबर आदि जाने अनजाने बहुत सारे कवि और साहित्यकार हैं।
0: यानी कौशिकी की तिब्बत की भूमि से आरंभ और गंगा संगम तक की ये पूरी कहानी नहीं कही जा सकती है, क्योंकि जीवन वृतांत के अनेकों परिच्छेदों की तरह इसकी अनेक धाराएं लुप्त हो गई हैं या गौन पड़ गई हैं। कोसी के सभी पुराने परिच्छेद पुरानी पांडुलिपियों की तरह जीर्ण शीर्ण हो गए हैं और कुछ तो नष्ट हो गए हैं।
2: कोसी हिम पर्वतमालाओं से उतरकर नेपाल के पर्वतों के बीच बहती, मचलती, उछलती, वीरपुर, भीमनगर और सहरसा पूर्णिया के क्षेत्रों को सींचती, 307 किलोमीटर की दूरी तय करती, कटिहार जिले के कुरसेला स्थान के पास थोड़ा उत्तर मुड़कर गंगा से संगम करती है, जिसके मध्य में एक बड़ा द्वीप है गोराही दियारा। कोसी संगम के बाएं भाग में पूरब की ओर काढ़ागोला और उसके पूरब कांतनगर है।
1: युगों पूर्व राजा भगीरथ ने जहां अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा नदी को धरती पर उतारा था, वहां पुरुषार्थी हमारे प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने करोड़ों संतरस्त जनता के कल्याण हेतु कोसी के अभिशाप को वरदान में बदल दिया। कोसी धारा जनजीवन के कल्याण के लिए बहने लगी कोसी धारा।
3: कौशिकी परमोदारा प्रवृत्ता च महानदी दिव्या पुण्योदकारम्या हिमवंतम उपाश्रता लोकस्य हितकार्यार्थे प्रवृत्ता भगिनी मम

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी।

0: ಭವಭಂಜನ ಭವಭಂಜನ ಗುಣ ಭವಭಂಜನ ಗುಣ ಅಪಮನ ಅಪನ ರಾಮ
1: प्रस्तुत है शिव पुराण एवं अन्य पुराणों और उपनिषदों पर आधारित यह कार्यक्रम शिव

महादेव शिव की महिमा के पिछले अंक में आप पार्वती की सखी चंचला के मोक्ष और उनके द्वारा पूर्व जन्म में बिंदु के शिवधाम प्राप्ति की कथा सुन चुके हैं। आज के कार्यक्रम में हम सर्वेश्वर शिव की उत्पत्ति और त्रिदेव की सृष्टि के बारे में बताएंगे। ये प्रकरण रुद्र संहिता के छठे अध्याय से आरंभ होता है। नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद।

0: हे शौनक, वो रुद्र एक ही है जो दूसरे का आश्रय नहीं लेता, वही सारे लोकों पर शासन करता है। उसी ने संपूर्ण लोकों की रचना की है, वही उनकी रक्षा करने वाला है और प्रलय काल में हिंसा को अपने में समेट लेता है। वो असंख्य आंखों वाला, अनेक मुख वाला और आकाश तथा पृथ्वी की सृष्टि करने वाला एकमात्र देव है।
1: हे महामुनि, आप कृपा कर मुझे सृष्टि के आरंभ में सदा शिव के उदय की कथा सुनाइए।
0: हे शौनक, सृष्टि के आरंभ से पूर्व चारों ओर केवल अंधेरा था। न पृथ्वी, न आकाश, न अग्नि थी, न वायु, और जल की सत्ता भी नहीं थी। न दिन होता था, न रात, कहीं कोई चर और अचर का चिन्ह भी दिखाई नहीं देता था। उस समय जो एकमात्र सत्य है, उसी का प्रभाव था। वो सत्य नाम और रूप से नहीं जाना जा सकता था। निराकार और निर्विकार होने के कारण उस सत्य के मन में एक आकार ग्रहण करने की इच्छा हुई। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए एक आकार की कल्पना की।
2: हे शिवा, यही है वो घड़ी जिसमें हमें किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर सारे संसार के संचालन का भार रख कर हम केवल इच्छा के अनुसार विचरण कर सके।
3: हे सदाशिव, आपका ये संकल्प अति उत्तम है। ऐसा करने पर नई सृष्टि की उत्पत्ति और उसकी रक्षा सहज ही संभव हो जाएगी।
2: शिवा, मुझे ये अमृत घट दो, अपने बाएं हाथ के 10वें अंग से मैं एक पुरुष प्रकट करता हूं।

0: हे स्वामी, आपने मुझे ये दिव्य रूप दिया है, अब मेरा नाम निश्चित कीजिए प्रभु और मुझे काम भी बताइए।
1: सारे ब्रह्मांड में व्याप्त होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु विख्यात होगा। इसके अतिरिक्त तुम्हारे अनेक नाम होंगे।
0: सदा शिव की जय हो। अब मुझे क्या करना होगा भगवान?
1: हे विष्णु, तुम हरि तपस्या करो, क्योंकि तपस्या ही सारे कामों को पूरा करती है। तुम्हारी तपस्या के फल से तुम्हारे शरीर से अनेक प्रकार की जलधाराएं निकलेंगी और वही सृष्टि के आरंभ का समय होगा।
0: जो आज्ञा सदाशिव।

0: हे शिवा, देखो विष्णु के तप के प्रभाव से सारी पृथ्वी पर जल ही जल प्रकट हो गया है। उसी जल में रहने के कारण विष्णु का दूसरा नाम नारायण भी होगा।
1: हे सदाशिव, भगवान नारायण के जल में शयन करने से सृष्टि का आरंभ कैसे होगा?
0: तुम्हारा प्रश्न सही है शिवा। सृष्टि की उत्पत्ति के लिए मैं भगवान विष्णु की नाभि से एक उत्तंक कमल को प्रकट करता हूं।

0: हे सदाशिव, मुझे एक उत्तंक कमल दिखाई दे रहा है और इस कमल के बीच एक आकार, ये कौन है?
1: हे शिवा, यही एकात्म ब्रह्म तत्व है जिसे ब्रह्मा नाम देना उचित होगा, क्योंकि इनका जन्म कमल से हुआ है, इसलिए इन्हें हिरण्यगर्भ भी कहा जाएगा। इनके चार मुख होंगे और इन्हीं के माध्यम से सृष्टि का कार्य आरंभ होगा।
2: मेरा जन्म कमल से हुआ है, लेकिन मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा कार्य क्या है? जिसने मुझे पैदा किया है उसका पता लगाना चाहिए। ऐसा करता हूं, इस कमल नाल के सहारे सहारे चलकर मैं इसके जन्मस्थान तक पहुंचने का प्रयत्न करता हूं। इस कमल नाल का तो अंत ही दिखाई नहीं देता, अब मैं क्या करूं?
3: तप करो, तप करो, तप करो।
2: यह आकाशवाणी संभवतः मुझे रास्ता दिखा रही है, मुझे तपस्या करनी चाहिए।
4: अहम् ब्रह्मास्मि, अहम् ब्रह्मास्मि, अहम् ब्रह्मास्मि, अहम् ब्रह्मास्मि।
2: ये चार बाहों और सुंदर नेत्र वाले कौन, जिन्होंने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे हैं? हे प्रभु, मैं आपकी छवि पर मोहित हूं, आप कौन?
4: मैं विष्णु हूं।

0: भगवान सदाशिव की इच्छा से मेरी ही नाभि से उपजे कमलनाल से आपका जन्म हुआ है। आप ब्रह्म स्वरूप हैं, इसीलिए आपका नाम ब्रह्मा है।
1: मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, तो मैं सृष्टि का आदिदेव हुआ। फिर मेरा जन्म आपकी नाभि से उपजे कमल से कैसे हुआ?
0: हे ब्रह्मा, आपके जन्म से पूर्व भगवान सदाशिव ने मुझे आकार दिया,
1: किंतु मैं आदिदेव हूँ।
0: फिर भी मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ।
1: श्रेष्ठता क्या जन्म के समय पर आधारित होती है?
0: इसका निर्णय आप और मैं दोनों नहीं कर सकते, ये विवाद का विषय है देव।
1: अरे अरे, ये कैसा प्रकाश!
0: हाँ, जैसे संपूर्ण सृष्टि अग्निपिंड में बदल गई है।
1: विशाल अग्निपिंड, ये तो आदि और अंत का कुछ भी पता नहीं चलता।
0: हमें पता लगाना चाहिए।
1: प्रयत्न करता, पर तो इसका तो और छोर ही नहीं मिलता।
0: हाँ हाँ, मैं भी नीचे से ऊपर लौट आया हूँ। क्यों ना ऐसा करें कि इस अग्निपिंड की परिक्रमा करें।
1: इसका आकार इतना विशाल है कि परिक्रमा संभव नहीं लगती।
0: ये क्या है देव? इसका क्या नाम है?
1: हाँ, चलिए ध्यान के मार्ग से इसके स्वरूप का पता लगाते हैं। चलिए इस अग्नि स्तंभ की स्तुति करते हैं।

0: आशांश्चिनत्ति।
1: महाप्रभु, हम आपका स्वरूप नहीं जानते। आप जो भी हैं, आपको हमारा नमस्कार। आप हमें अपने यथार्थ रूप में दर्शन दीजिए।

इन तीनों की ध्वनियां मिलकर ओम नाद भी परिवर्तित हुई है। लगता है यही नाद इस ज्योतिर्लिंग से फूटा है। आओ इस नाद की उपासना करें।

0: हे ब्रह्मा, यही है वो परम तत्व जिसकी उपासना हम दोनों कर रहे हैं।
1: ये परम ज्योति स्वरूप निराकार भगवान शिव ही हैं। आओ आओ इनकी स्तुति करें।

तुम्हारी स्तुति से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। आओ, संसार का कल्याण करने वाले 24 अक्षरों से युक्त गायत्री मंत्र की रचना करें, जो तीनों लोकों में चर और अचर के मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करेगा।

0: हे देवों में श्रेष्ठ प्रजापति ब्रह्मा और हे नारायण, चलिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना कीजिए, जो संसार के सभी प्राणियों को काल के भय से मुक्त कर दे और मेरे चरणों में उनकी भक्ति दृढ़ करे।
1: जैसी आज्ञा सदाशिव।

0: हे ब्रह्मा, हे विष्णु, मैं आप दोनों की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुआ। ब्राह्मण, आप मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि कीजिए। और वत्स विष्णु, आप इस चराचर जगत का पालन करते रहिए। सारे संसार में आपकी साकार पूजा हो।
1: हे सदाशिव, संसार के प्राणियों के हित के लिए आपका स्वरूप क्या होगा?
0: मैं ही सृष्टि का पालक और संहार करता सगुण भी हूं और निर्गुण भी। मैं ही सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार परम ब्रह्म परमात्मा हूं। संसार के संचालन के लिए तीन रूपों में विभक्त हुआ हूं।
1: हे सदाशिव, क्या संसार के संहार के लिए आपका यही रूप चराचर में जाना जाएगा?
0: ब्राह्मण, तुम्हारे शरीर से मेरा एक और रूप प्रकट होगा जो रुद्र कहलाएगा। मेरे ही अंश से प्रकट हुए रुद्र की शक्ति मुझसे कम नहीं होगी।
1: हे शिव, आप निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, किंतु साकार रूप में भी आप महेश्वर के रूप में अवस्थित होंगे। संसार के लोगों के लिए कहीं ये भ्रम का कारण तो नहीं बन जाएगा?
0: हे विष्णुदेव, वो एकात्म शक्ति ही तीन रूपों में विभाजित है, इसलिए भ्रम की कोई संभावना नहीं। क्योंकि ब्रह्मा सृष्टि की उत्पत्ति के कारण है, और हे विष्णु, आप उसके पालन करता है, और मैं कल्याणकारी होते हुए भी प्रलयकारी भी हूं। इसलिए संसार के लोग सबसे पहले ब्रह्मा, फिर आपकी, और तत्पश्चात मेरे साकार रूप शंकर की आराधना करेंगे।

0: हे सदाशिव, सृष्टि की उत्पत्ति और संचालन के लिए क्या केवल सततत्व ही पर्याप्त होगा?
1: हे शिव, माया के अभाव में संसार की कार्य सिद्धि क्या संभव है?
2: हाँ देव, ब्रह्मांड के संपूर्ण स्वरूप के लिए माया तो आवश्यक है। इसके लिए प्रकृति ही देवी उमा के नाम से जानी जाएंगी। इन्हीं की शक्ति वाग्देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेंगी, जिन्हें संसार के प्राणी सरस्वती के रूप में जानेंगे। फिर इन प्रकृति देवी से जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी, वे लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का आश्रय लेंगी। इसके बाद काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होगी, वो मेरे अंश रुद्रदेव को प्राप्त होंगी।
0: हे ब्रह्मन, भगवान सदाशिव की इच्छा के अनुसार आप वाणी की शक्ति वाग देवी के साथ स्वर और ध्वनि को आकार देंगे।
2: हे ब्रह्मा, यही आदि ध्वनि नाद ब्रह्म कहलाएगी।
0: जैसी आपकी इच्छा दिवाली।

0: हे शौनक, मैंने तुम्हें सृष्टि के आरंभ की कथा सुनाई। इस तरह से पूरे ब्रह्मांड में भगवान शिव के ज्योतिर्मय लिंग स्वरूप से अंधकार का नाश हुआ और समस्त संसार प्रकाशमान हो उठा।
1: हे महाभाग सूत जी, प्रकाशित संसार में सत्य और असत्य की महिमा को आपने ब्रह्म और माया के रूप में बताया, इसका क्या रहस्य है?
0: हे शौनक, जिस तरह अंधकार के अभाव में प्रकाश का कोई अस्तित्व नहीं है, उसी तरह असत्य के बिना सत्य का कोई महत्व नहीं, और जीवन के अस्तित्व के लिए भी मृत्यु का होना अनिवार्य है। यही संपूर्ण सृष्टि के संचालन का रहस्य है। इसी सत्य को वेदों में इस तरह कहा गया है।

0: मृत्युर्मामृतं गमय।
1: अर्थात हे परमेश्वर, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, असत्य से सत्य की ओर ले चलो और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो।
2: हे शौनक, इस तरह भक्तवत्सल भगवान शंभु ने ब्रह्मा और विष्णु को संसार के संचालन का दायित्व सौंप दिया और देखते ही देखते अंतर्धान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग पूजा का विधान आरंभ हुआ है। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव काम और मोक्ष दोनों ही देने वाले हैं। शिवलिंग की वेदी महादेवी का स्वरूप

0: लिंग साक्षात महेश्वर का।
1: हे महामुनि, ये लिंग स्वरूप शिव कहाँ कहाँ विराजमान हैं और इनकी महिमा क्या है?
0: हे शौनक, शिव पुराण में वर्णित रुद्र संहिता के प्रसंग के अनुसार देवर्षि नारद ने जिन शिवलिंगों का भक्ति पूर्वक दर्शन किया और पृथ्वी की परिक्रमा की,

0: हे सूत जी, कैलाशपति शंकर के लिंग रूप के बारे में विस्तार से जानकर अत्यंत सुख मिला। कृपा पूर्वक बताएं कि उनके अन्य रूपों का आधार क्या है।
1: महामुनि शौनक, आपका ये प्रश्न सहज और स्वाभाविक है। इसके संबंध में अगली बार विस्तार से बताएंगे।
2: श्रोताओं, शिव पुराण के रुद्र संहिता के आरंभिक अध्यायों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के महत्व को बताया गया था। अगले प्रकरण में मनु तथा शत्रुपा और सती और शिव की महत्ता को बताया जाएगा।

है कैसी शुभ घड़ी आई। चल शिव जी बिहाने देखो पार्वती माई, थोड़ी भभूति रमाई थोड़ी भंग चढ़ाई। चल शिव जी बिहाने देखो पार्वती माई, ये है

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

ऐसी यही दाग लगा के बेटी मन।

प्रभु श्री राम सूपनखा का आत्मनिवेदन न मानते हुए अपने भाई लक्ष्मण को इशारा करते हैं और भाई लक्ष्मण अपने प्रभु राम जी का आदेश पाते ही तीर से सूपनखा की नाक काट लेते हैं। और उधर रावण के दरबार में राग रंग उत्साह जेहर देखा हर तरफ खाली वाहे वाह। इतने में रोवत उहां गैल सूपनखा आए, पड़ल रंग में भंग औ गैल सनाका छाए। और यह देख रावण अपनी बहन का हाल मारीच को समझा बुझाकर उसे स्वर्ण मृग के रूप में पंचवटी भेजते हैं।

लक्ष्मण का समझाए के राम बढ़ौले पाँव, सीता लक्ष्मण रह गए पंचवटी के छाँव। सीता जी की मांग पूरी करने के लिए प्रभु श्री राम स्वर्ण मृग के पीछे चल पड़ते हैं और प्रभु राम का तीर लगने पर मारीच राम जी की आवाज़ में हाय लक्ष्मण पुकार उठते हैं। यह सुन सीता घबरा उठती हैं और गुस्से में जानकी जी लक्ष्मण को कठोर वचन कहते हुए प्रभु राम को खोजने के लिए वन की ओर भेजती हैं। उसके पश्चात साधु के वेश में रावण पंचवटी में सीता से भीख मांगने पहुंचते हैं।

राजभवन और उसके बाहर नगर में भी उत्सव का रंग छाया हुआ है। राग रंग के उत्साह से भरे पुरवासी आते जाते दिखाई देते हैं और स्त्रियां नृत्य करती और गीत गाती दिखाई देती हैं।

लक्ष्मण रेखा पार करने पर रावण असली रूप धारण करके सीता का हरण करते हैं। अब राम लक्ष्मण पंचवटी पहुंचकर सीता को ना पाकर विलाप करते हुए घायल जटायु से मिलते हैं। गिद्धराज राम लक्ष्मण को सीता हरण की दिशा बताते हैं और सीता की खोज करते हुए दोनों भाई शबरी के आश्रम पहुंचते हैं। यह देख शबरी अत्यधिक भक्ति में लीन हो जाती हैं।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

मर्यादा पुरुषोत्तम राम प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस और प्रभु राम के जीवन प्रसंगों पर आधारित इस विशेष नाटक की पांचवी कड़ी।

0: जनसमूह को साथ ले अपने भाई शत्रुघ्न के साथ भरत जी तीसरे दिन श्रृंगवेरपुर के पास जा पहुंचे।
1: भरत आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? कहीं उनके मन में कुछ कपट तो नहीं है? अवश्य है, न होता तो सेना क्यों लाते? शायद वे समझते हैं कि राम वन में अकेले हैं, उनको मारकर निष्कंटक राज्य क्यों ना भोगा जाए। आखिर कैकेयी के बेटे हैं ना, लेकिन वे ये नहीं जानते कि सारे देवता और दानव मिलकर भी यदि आए तो राम को नहीं जीत सकते। सैनिकों सावधान हो जाओ, हत बांसव बोरहु तरन, कीजिए घाटा रो। देखता हूं मेरे रहते गंगा कैसे पार करती हैं। ऐसी मृत्यु कब कब मिलती है, और राम के लिए मरने में तो दोनों हाथ लड्डू हैं, यश भी और मुक्ति भी। लाओ मेरा तूणी धनुष और कवच उठा लाओ, देर मत करो।
2: जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। राम के प्रताप और आपके बल से हम भरत की सेना के एक एक योद्धा को चुन चुन कर मार डालेंगे। जीते जी पीछे हटने वाले नहीं, सारी धरती को रुंड मुंड से पाट देंगे।
3: युद्ध के बाजे बजने दो।
2: बहुत ही अच्छा शगुन है, रण में अवश्य सफलता मिलेगी।
4: ठहरो, राम ही भरत मनावन जाहीं, शगुन कहीं अस विक्रहु नाहीं। शगुन कहता है कि भरत राम को मनाकर लौटा लाने के लिए बन जा रहे हैं, तुम उनसे जाकर मिलो, युद्ध का अवसर नहीं आएगा।
1: शायद आप ठीक कहते हैं, नीति कहती है सहसा करे पछताहे बिमूढ़ा। भरत का शील स्वभाव जाने बिना लड़ाई की घोषणा करना अपनी ही हानि करना है, इसलिए तुम सब लोग घाट पर डटे रहो, मैं अकेला जाकर सब भेद ले आता हूं।
0: उन्हें इस प्रकार समझा बुझाकर और भेंट के लिए नाना प्रकार की सामग्री लेकर वे भरत से मिलने के लिए चले। दूर से ही अपना नाम बताकर दंडवत प्रणाम किया। गुरु वशिष्ठ के मुख से ये सुनकर कि राम के सखा निषाद राज उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, भरत झट रथ से कूद पड़े और उन्हें उठाकर छाती में भर लिया। करत दंडवत देखते ही भरत लीन उर लाई, मनहु लखन सन भेट भई, प्रेमुन हृदय समाई।
5: धन्य धन्य धन्य।
1: श्रृंगवेरपुर का निवासी निषाद आपके चरणों में प्रणाम करता है।
6: कहिए निषाद राज, सब प्रकार से मंगल तो है?
1: प्रभो, आपकी कृपा से मेरे और मेरे करोड़ों कुलों का मंगल ही मंगल है। मेरे जैसे कपटी कायर मूर्ख और सब प्रकार से गए बीते को जब से राम ने अपना लिया, तभी से मैं संसार का भूषण बन बैठा हूं।
0: निषाद की ऐसी प्रीत देखकर और सब लोगों ने भी उन्हें गले से लगा लिया। सबको लेकर वे श्रृंगवेरपुर आए और गंगा के दर्शन कर गदगद हो उठे। करहीं प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्ममय बारी निहारी, करी मज्जनु मांगहीं कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। भरत बोल उठे,
6: माँ गंगे, आपका रेणु सब सुख देने वाला है, काम धेनु के समान है। मैं आपसे यही वर मांगता हूँ।

0: कि राम और जानकी के चरणों में मेरा सहज स्नेह बना रहे। निषाद राज, चलो चलकर मुझे वे सब स्थान दिखलाओ जहां राम, लक्ष्मण और सीता ने शयन किया था, जिससे मेरे नेत्रों को शांति मिले और मन की जलन मिटे।
1: जब भरत जी ने उन स्थानों को देखा तो उनके अंतर से जो प्रीति उमड़ी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। चरण रेख रज आंखिन लाई, बनई न कहत प्रीति अधिकाई। वो बार बार राम, सीता और लक्ष्मण की प्रशंसा करते नहीं अघाते थे।

0: धिक कह गई अमंगल मूला, भय सि प्राण प्रियतम प्रतिकूला। मैं थिक थिक अघ उदति अभागी, सब उत्पात भयउ जेहि लागी। मैं पापों का समुद्र हूँ, अभागा हूँ, मुझे धिक्कार है। मेरे ही कारण ये सारा बखेड़ा उठ खड़ा हुआ है। कुल कलंक कर सृजऊ विधाता, साई दोह मोहिकीन कुमाता।
1: नाथ, आप व्यर्थ क्यों अपना जी छोटा कर रहे हैं? आप राम को प्यार करते हैं और राम आपको प्यार करते हैं। विधि बाम की करनी कठिन, जिहि मातु कीनी भावरी। ते राति पुने पुने करही, प्रभु सादर सराहना रावरी। मैं सौगंध खाकर कह सकता हूँ कि राम किसी को भी उतना प्रिय नहीं समझते जितना आपको। विश्वास कीजिए, अंत में सब मंगल ही मंगल होगा।
2: निषाद के इस प्रकार बार बार धीरज धराने पर भरत विश्राम करने के लिए चले गए। सवेरे बहुत जल्दी उन्होंने गंगा नदी को पार किया और सीताराम सीताराम रटते हुए प्रयाग पहुंच गए। भरत जी के पैरों में छाले पड़ गए थे। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। भरत जी ने भाव विह्वल होकर त्रिवेणी की स्तुति की।
0: अरथ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्बान। जनम जनम रति राम पद, यह बरदान न आन।
3: तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। बाद गलानी करहु मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही।
2: इसके पश्चात भरत जी ने मुनिवर भरद्वाज के आश्रम में जाकर उन्हें प्रणाम किया। मुनिवर ने भरत जी से कहा, मैं तो तुम्हें देखकर यही समझ रहा हूँ मानो राम का प्रेम ही तुम्हारा रूप धरे चला आया है। भरत जी ने अपनी व्यथा प्रकट की। भरद्वाज मुनि के समझाने पर वे कुछ शांत हुए और एक रात वहाँ बिताकर सवेरा होते ही मुनि को प्रणाम कर वे निषाद राज के हाथ में हाथ डाले आगे बढ़ गए। जैसे साक्षात प्रेम ही दो शरीर धारण किए चला जा रहा हो। राम सखा कर दीन है लागू।

0: चलत देह धरि जनु अनुरागु। मार्ग में जो भी भरत को देख लेता ऐसा लगता मानो उसने परम पद पा लिया है। गांव गांव के स्त्री पुरुष अपना अपना काम छोड़कर उन्हें देखने के लिए दौड़े चले आते। प्रेम में मगन हो वे ऐसी अटपटी बातें करते कि मन उमड़ उमड़ पड़ता।
1: कौन आ रहे हैं? ऐसा लगता है जैसे सचमुच राम लक्ष्मण चले आ रहे हैं।
2: अच्छा, राम लखन सखी हो ही कि ना ही? बै बप्पू बरन रूप सोई आली, सीलु सनेहो सरिस समचाली।
3: बेशु न सो सखी, सी न संगा, आगे अनी चली चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेह होई यही भेदा।
2: ना ना, तुझे क्या वो कहानी नहीं मालूम कि किस प्रकार राम को राज तिलक मिलने वाला था और किस प्रकार भरत की माता कैकेयी ने विघ्न डाला? लेकिन सखी, भरत तो भरत ही हैं। देखो तो,
3: चलत पयादे खात फल, पिता दीन तजिराज, जात मनावन रघुबरही, भरत सरिस को आज।
2: हाय, कैकेयी माँ की कोख से ऐसा योगी पुत्र कैसे हुआ?
3: इसमें रानी का क्या दोष? ये सब करतूत तो विधाता की ही है, पर हमारे लिए तो ये अच्छा ही हुआ। हम ओछे कुलों वाली, मलिन कर्म करने वाली, बुरे गांव में रहने वाली, हमें इनके दर्शन मिले।
2: सच सखी, हमने कोई बड़े ही पुण्य कर रखे थे जिस कारण आज हमें इनके दर्शन हुए।
0: भरत के दर्शन पाकर रास्ते के लोगों के भाग्य खुल गए। अस आनंद अचरज प्रतिग्रामा, जनु मरुभूमि कलप तरु जामा। और जैसे जैसे वे आगे बढ़ते थे अच्छे अच्छे शकुन होते जाते थे। उन्हें विश्वास हो चला था कि राम अवश्य मिलेंगे। प्रेम की मदिरा में सब ऐसे मस्त थे कि मुख से ठीक ठीक शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे। शिथिल अंग पग मग डग डोलही, बिह्वल बचन प्रेम बस बोलही। उसी समय निषाद राज ने कहा,
4: नाथ वो देखिए, वो है चित्रकूट पर्वत। उसके समीप ही मंदाकिनी के तट पर सीता जी के साथ दोनों भाई कुटी बनाकर निवास करते हैं।
5: वो है चित्रकूट पर्वत कामदगिरी, वहां रहते हैं मेरे राम। सीतापति राम की जय।
6: सीतापति राम की जय।
2: नाथ, मैंने स्वप्न में देखा है कि आपकी विरह की तपन से अपनी देह तपाए हुए भरत जी सारा समाज साथ लिए चले आ रहे हैं, और सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी।
7: लक्ष्मण, यह स्वप्न कुछ अच्छा नहीं है। जान पड़ता है कोई बहुत बुरा समाचार आने वाला है। देखो तो, आकाश धूल से भर गया है। पशु पक्षी घबराए हुए आश्रम की ओर भागे चले आ रहे हैं। बात क्या है?
8: नाथ, नाथ, भरत अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ इधर ही आ रहे हैं।
7: भरत आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं?
8: नाथ, उनके साथ बहुत बड़ी सेना भी है।
7: सेना है तो कहीं भरत मुझे लौटा लेने के लिए तो नहीं आ रहे हैं? एक और पिता का वचन, दूसरी ओर भरत का प्रेम। लेकिन नहीं, भरत तो सज्जन है, ज्ञानी है, वे मेरी बात निश्चय ही मान लेंगे।
9: स्वामी क्षमा कीजिए, मैं बिना पूछे ही बोलने लगा हूं। आपका सेवक जो ठहरा, दृष्टता के लिए क्षमा कीजिएगा।
7: नहीं नहीं लक्ष्मण, कहो क्या कहते हो?
9: आप बड़े सहृदय और सरल चित्त वाले हैं, सबको अपने समान समझकर प्रेम करते हैं। लेकिन स्वामी, विषय जीव पाई प्रभुताई, मूड मोह बस हो ही जनाई। मैं मानता हूं कि भरत नीतिवान है, सज्जन है, ज्ञानी है, और आपके चरणों में उनकी प्रीति भी है। लेकिन तेउ आजु राम पद पाई, चले धर्म मर्जाद मिटाई।
7: लक्ष्मण,
9: वे समझते हैं राम वन में अकेले हैं, इसलिए सेना लेकर आ रहे हैं।
7: लक्ष्मण, लेकिन।
9: लेकिन क्या? अगर उनके मन में कपट ना होता तो सेना क्यों लाते? भरत ही दोसु देह को जाई, जग बौराई राजु पद पाई।

0: नाथ, मेरे कहने का बुरा ना मानिएगा, उन्हीं के कारण हमें ये दिन देखना पड़ा है। अब और नहीं सहा जा सकता। मैं क्षत्रिय हूँ, रघुकुल में मेरा जन्म हुआ है, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं क्षण भर में भरत को सिखा दूंगा कि युद्ध कैसे लड़ा जाता है। राम निरादर कर फल उपाई, सो वह समर सेज दो भाई। मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूँ, जो सहाय कर संकर आई, तो मारूं रन राम दुहाई।
1: तात, तुम्हारा प्रताप सभी जानते हैं, किंतु सोच विचार कर ही कोई कदम उठाना चाहिए।
2: लक्ष्मण, तुम ठीक कहते हो। संसार में यदि सबसे बुरा कोई मद है तो वह राजमद है। लेकिन जहां तक भरत का प्रश्न है, उनके समान श्रेष्ठ पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं हुआ। सुनो, भरत ही होई न राजमधु, विधि हरि हर पद पाई, कबहू की कांजी सीकरनी, क्षीर सिंधु बिन साई। अंधकार भले ही सूरज को निकल जाए, आकाश भले ही बादल में खो जाए, पृथ्वी भले ही अपना स्वभाव छोड़ दे, मच्छर की फूंक से भले ही सुमेरु पर्वत उड़ जाए, परंतु भरत को राजमत कभी नहीं सता सकता। लखन, तुम्हार सपत पितुवाना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना।

0: जिस समय श्री राम जी लक्ष्मण जी को इस प्रकार समझा रहे थे, उसी समय भरत जी निषाद राज के साथ श्री राम की ओर आ रहे थे। उनका मन शंकाओं से भरा हुआ था। सोच रहे थे कि कहीं मेरे आने का समाचार पाकर राम चले न जाएं। तभी निषाद राज ने टीले पर चढ़कर बरगद का वो पेड़ दिखाया जिसके समीप राम की कुटिया थी। फिर तो जहां भी भरत जी राम के चरण चिन्ह देख लेते, उसकी धूल उठाकर सिर माथे पर लगाते। उस समय वे इतने प्रेम विभोर हो उठते कि उनकी दशा देखकर जीव ही नहीं जड़ भी प्रेम में डूब जाते। धन्य है भरत, होत न भूतल भाऊ भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। उसी समय उन्होंने राम को देखा। लसत मंज मुनि मंडली मध्य सीय रघुनंद, ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगति सच्चिदानंद। उनका मन प्रेम से मगन हो उठा। हर्ष शोक सुख दुख सब भूलकर वे पुकारते हुए धरती पर गिर पड़े।
1: हे नाथ रक्षा करो, हे स्वामी रक्षा करो, रक्षा कर, रक्षा कर।
2: भगवान भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं।
0: उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा। बर बस लिए उठाई उरलाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी बिसरे सब ही अपान। इस मिलन के प्रेम का वर्णन कैसे किया जा सकता है? कोई भी कवि मन वचन और कर्म से इसका वर्णन नहीं कर सकता। दोनों भाई सुध-बुध फूल कर परम प्रेम में उमगे जा रहे थे। सीता जी तो इतनी विफल हो उठी थी कि बोल ही नहीं सकी। वास्तव में उस समय न तो किसी ने कुछ कहा ही, न किसी ने कुछ पूछा ही, क्योंकि सबका मन इतना प्रेममय था कि कुछ सूझ नहीं रहा था। किसी तरह साहस करके निशान

0: नागराज ने कहा,
1: हे नाथ, मुनिराज वशिष्ठ के साथ सब माताएं, अयोध्या के नगर निवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग में व्याकुल होकर आपसे मिलने यहाँ आए हैं।
0: सुनते ही राम उधर चल पड़े। उन्होंने मुनि वशिष्ठ को प्रणाम किया, फिर अपनी माताओं को देखा, जैसे सुंदर लताओं को पाला मार गया हो। प्रथम राम भेंटी कैकेयी, सरल सुभाय भगति मति भेई, पग परिकीन प्रबोध बहोरी, काल करम विधि सिर धरि थोरी। इस प्रकार सभी को सांत्वना देकर और सबसे स्नेह से भेंट करके वे आश्रम की ओर लौटे। वहां फिर मिलन समारोह शुरू हो गया। सीता ने अपनी सासुओं को देखा तो एकाएक सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली, मानो राज हंसिनिया बधिक के हाथ में पड़ गई हूं। और जब मुनि वशिष्ठ ने महाराज दशरथ के स्वर्गवास का समाचार सुनाया तो सबके करुण क्रंदन से वो वन प्रांतर कातर हो उठा। लगा जैसे महाराज का स्वर्गवास उसी दिन हुआ हो। मुनि वशिष्ठ के समझाने पर सब लोगों ने स्नान किया और दो दिन का व्रत रखा। उसके बाद दो दिन और वे उस वन प्रांतर में घूमते रहे। वनवासी, कोल, किरात और भील उनका नाना प्रकार से स्वागत करते। उनका प्रेम देखकर अयोध्यावासी लज्जित हो उठते, सोचते, राम से इनको इतना प्रेम है, उसके सामने हमारा प्रेम तो कुछ भी नहीं है।

0: लेकिन सबके मन शंकाओं से भरे हुए थे। राम लौटेंगे भी कि नहीं? तभी गुरु वशिष्ठ ने भरत को बुला भेजा, कहा, सबको सुख देने वाला तो एक ही काम है कि राम का राज तिलक हो। लेकिन सोचने की बात यह है कि राम अयोध्या वापस कैसे जाएंगे?
1: हे मुनिश्रेष्ठ, आप ही कुछ उपाय सुझाइए।
0: इसका एक ही मार्ग है और वो ये है कि तुम दोनों भाई वन में रहो और लक्ष्मण सीता सहित राम लौट जाएं।
1: मैं तो जन्म भर वन में वास करने को तैयार हूं, मेरे लिए इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। हे गुरुदेव, राम और जानकी तो सबके हृदय की बात जानते हैं और आप भी सर्वज्ञ हैं, इसलिए आपने जो निश्चय किया है उसे पूरा कर डालिए।
0: भरत के ये वचन सुनकर और उनका ऐसा स्नेह देखकर मुनि वशिष्ठ सहित सभी लोग गदगद हो उठे। भरत की विराट महिमा का पार कौन पा सकता है? भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति ठाड़ी तीर अबलासी। इसलिए वे उनको लेकर राम के पास पहुंचे। बोले,
2: भद्र राम, तुम तो सब कुछ जानते हो, इसलिए कोई ऐसा उपाय ढूंढ निकालो जिससे सबको संतोष हो। हम लोग बहुत दुखी हैं, अपना हित अनहित कुछ नहीं सोच पा रहे हैं।
3: गुरुदेव, आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? उपाय तो सब आपके हाथों है।

0: मुझे आज्ञा दीजिए, मैं पालन करूंगा।
1: राम, तुमने बात तो ठीक कही, पर भरत के स्नेह का विचार नहीं किया। मेरी बुद्धि तो भरत के हाथ बिक चुकी है। मैं शिव की दुहाई देकर कहता हूं कि तुम भरत की इच्छा का ध्यान रखते हुए जो कुछ भी करोगे उसी से सबका कल्याण होगा। इसलिए पहले भरत की प्रार्थना सुन लो।
0: गुरुदेव, मुझे आपकी सौगंध है। नाथ सपथ पितु चरण दुहाई, भय न भुवन भरत सम भाई। जिस भरत पर आपका इतना स्नेह है उसके सौभाग्य का वर्णन भला कौन कर सकता है। वे मेरे छोटे भाई हैं, उनके मुंह पर उनकी बड़ाई करने में मुझे संकोच हो रहा है। जो कुछ भी वे कहेंगे वैसा ही करने में मैं भलाई समझता हूं।
1: तब हे भरत, तुम संकोच त्याग कर अपने मन की बात कह डालो।
2: मैं क्या कहूं, मुझसे बड़ा पापात्मा इस संसार में कोई नहीं।
0: देखो भाई, जहां तक मेरी बात है मैं तो तुम्हें भली भांति जानता हूं, पर मैं करूं तो क्या करूं। जिन महाराज ने मेरे प्रेम और सत्य की रक्षा के लिए प्राण तक त्याग दिए उनकी बात कैसे टालूं। उधर गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारी बात का ध्यान रखूं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं।
2: हे स्वामी, आप वही कहिए जिससे आपके चित्त में किसी प्रकार की उलझन पैदा ना हो, क्योंकि जो सेवक अपने स्वामी को उलझन में डालकर अपना भला करना चाहता है उसके समान नीच कोई नहीं हो सकता। यदि आप लौट चलते तो सबका हित होता, पर आपकी आज्ञा पालन करना उससे भी कई करोड़ गुना अच्छा है। स्वारथ नाथ फिरे सब ही का, किए रजाई कोटि विधिनी का। यह स्वारथ परमारथ सारू, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू। मैं राज तिलक की सामग्री ले आया हूं, आप उसे स्वीकार करके सफल कर दीजिए। मुझे छोटे भाई के साथ वन में छोड़ दीजिए और आप राज्य संभालिए। यदि आप वन ही में रहना चाहते हैं तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न को अयोध्या लौटा दीजिए, मैं आपके साथ चलूंगा। या फिर हम तीनों भाई वन में रह जाते हैं, आप सीता जी सहित लौट जाइए। इनमें से जो भी प्रस्ताव ठीक लगे स्वीकार कीजिए, मुझ पर निर्णय मत छोड़िए। कहूं वचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत के चित चेतु।
1: कुछ निश्चय हो पाता कि समाचार मिला राजा जनक आ पहुंचे हैं। एक बार फिर उस मिलन समारोह में करुण रस की सरिता प्रवाहित हो चली। सीता की माता राम की माताओं से मिलने आई। वो मिलन भी कैसा अपूर्व था। माता कौशल्या बार बार जनक पत्नी से यही कहती थी कि राजा जनक लक्ष्मण को लौटा ले चलें और भरत को वन में रहने दें। गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही। लेकिन भरत और राम के प्रेम को तर्क से नहीं समझा जा सकता। सब यही चाहते थे कि राम राजा हों और भरत युवराज। सभी निरंतर इसी प्रश्न को लेकर विचार विनिमय कर रहे थे। सभा फिर जुड़ी। मुनि वशिष्ठ ने भरत के उच्च विचारों का परिचय देते हुए कहा,
3: राम, मैं तो यही कहता हूं कि तुम जो आज्ञा दोगे वही सब लोग मान लेंगे।
0: हे नाथ, जहां आपके साथ मिथिलेश जैसे महापुरुष विद्यमान हो वहां मेरा कुछ भी कहना धृष्टता होगी। मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूं कि आप तथा मिथिलेश जो भी आज्ञा देंगे वही मैं शिरोधार्य करूंगा।
2: आप लोग मेरा यह अत्यंत अनुचित व्यवहार क्षमा कर दीजिए। क्षमब आज अति अनुचित मोरा, कहूं बदन मृदु बचन कठोरा। हे राम, आप मेरे माता

0: पिता, गुरु, स्वामी और मित्र सभी कुछ हैं, परम हितकारी और अंतर्यामी भी हैं। अपने अज्ञान के कारण आपके और पिताजी के वचन टालकर ये सारा समाज लेकर यहां चला आया हूं। ये बड़ी ढिठाई में कर रहा हूं। आप मुझे यही समझकर क्षमा कर दीजिए कि मेरा जी बहुत दुखी है। अब आप आज्ञा दें और वही करें जिसमें मेरा कल्याण हो। अज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, सुप्रसाद जन पावे देवा।
1: भाई भरत, तुम धर्म धुरीण हो, तुम्हारा प्रेम अनुपम है, मन वचन कर्म से तुमने कभी कोई दोष नहीं किया। तुम सूर्य वंश के नियम को, सत्य का पालन करने वाले पिता को, समय को, समाज की दशा को, गुरुजनों की मर्यादा को, मित्र और शत्रु सबके मन को समझते हो। किसका क्या कर्तव्य है यह भी तुम जानते हो, और यह भी जानते हो कि कर्तव्य का पालन करने में ही तुम्हारा और मेरा हित है। इसीलिए भाई, तुम वही काम करो और मुझसे भी वही कराओ जिससे सूर्य कुल की मर्यादा की रक्षा हो।
0: किंतु आप मुझे संकट में,
1: असह्य संकट सहने पर भी तुम प्रजा और परिवार को सुख पहुंचाने का प्रयत्न करो। तुम्हें कोमल जानकर भी मैं ऐसा कठोर आदेश दे रहा हूं, लेकिन विपत्ति में अच्छे भाई उसी प्रकार सहायता करते हैं जैसे बाण का आघात होने पर स्वयं अपना हाथ आड़े आकर उसे रोक लेता है।
0: हे नाथ, आपके वचन सुनकर मुझे वही सुख प्राप्त हो गया जो आपके साथ वन जाने में मिलता। अब कृपाल जस आयस होई, करो शीस धर सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि देई, अवध पार पावो जेसे। मेरे मन में एक और भी लालसा है, पर संकोच के कारण कह नहीं पाता।
1: कहो कहो, संकोच की क्या बात है?
0: यदि आपकी आज्ञा हो तो चित्रकूट के मुनियों के आश्रम, तीर्थ, वन प्रांतर, विशेषकर आपके चरण चिन्हों से अंकित ये धरती घूमकर देखाऊं।
1: भाई, यहां मेरी नहीं, अत्रि मुनि की आज्ञा लेकर निर्भय होकर वन में विचरण कर सकते हो। उन्हीं के प्रसाद से इस जंगल में मंगल छाया हुआ है।
2: राम और भरत की यह वार्ता सुनकर सब लोगों को हर्ष भी हुआ और विषाद भी। विषाद इसलिए कि राम को अब वन में ही रहना पड़ेगा। माता कौशल्या ने समझ लिया कि संसार में जितना सुख है उतना ही दुख भी है। राम मातु दुख सुख सम जानी, कही गुण राम प्रबोधी रानी। उधर अत्रि मुनि की आज्ञा लेकर भरत 5 दिन तक उस पवित्र वन में घूमते रहे। उसके बाद एक बार फिर सभा स्थल पर इकट्ठे हुए। राम संकोच के कारण कुछ नहीं कह पा रहे थे, लेकिन भरत उनके मन का भाव ताड़ गए। धीर गंभीर स्वर में वे बोले,
0: हे नाथ, आपने मेरी सारी अभिलाषाएं पूरी कर दी। मेरे कारण सब लोगों को और आपको भी बहुत कष्ट हुआ। अब मुझे वो आधार तो दीजिए जिसके आदेश पर मैं 14 वर्ष तक अयोध्या की सेवा करता रहूं। इस अवधि में मुझे क्या करना होगा ये भी समझाइए।
3: धन्य हो,
4: धन्य धन्य हो,
3: धन्य हो, धन्य
1: हो। भाई, जब तक गुरु वशिष्ठ और राजा जनक जीवित हैं, हमें और तुम्हें स्वप्न में भी किसी बात का कष्ट नहीं हो सकता। हमारा कल्याण इसी बात में है कि हम दोनों भाई पिता की आज्ञा का पालन करें। जो गुरुजनों की आज्ञा का पालन करता है, उससे यदि भूल में कोई बुरा काम भी हो जाए तो वो बुरा नहीं समझा जाता। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पालें, चले हूं कुमग पग पर ही न खालें। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अयोध्या जाओ और प्रजा का पालन करो।
0: लेकिन मेरा आधार?
1: तुम्हारा आधार तुम स्वयं हो।
0: नहीं।
1: तब
0: आपकी चरण पादुकाएं, मैं उन्हीं से आदेश लेकर प्रजा का पालन कर पाऊंगा।
1: जैसी तुम्हारी इच्छा।
5: श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र की जय।

0: ऐसा श्रेष्ठ अवलंब पाकर भरत फूले नहीं समाए। उन्हें अब ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे सीता और राम के साथ रहने में होता। लेकिन अभी तो विदा का वो पावन और विषाद से भरा दृश्य शेष था। सब एक दूसरे से भेंट करते नहीं आघाते थे। तन मन वचन सब कहीं प्रेम ही प्रेम उमड़ा पड़ रहा था। मेरी काव्यवाणी उस दृश्य का वर्णन नहीं कर पाएगी। उसका स्मरण करते ही वो लज्जा से रकुचा गई है। विशेषकर सीता जिस समय अपने परिजनों से मिलकर लौटी और अपनी सासुओं से भेंट की, उस प्रीति का वर्णन करने के लिए तो कवि के हृदय में तनिक भी शक्ति नहीं रही है। परिजन मातु पिता ही मिली सीता, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता, करी प्रणाम भेटी सब सासु, प्रीति कहत कभी ही न हुलासु। लेकिन इस पर्व का भी अंत आना था। सबको विदा करके राम लक्ष्मण और सीता परिजनों के वियोग में बहुत देर तक दुखी मन बैठे रहे और भरत के प्रेम तथा स्वभाव का बखान करते रहे। भरत स्नेह स्वभाव सुबानी, प्रिया अनुज सन कहत सबानी। उधर भरत जनक और वशिष्ठ राम के विरह में बड़े अनमने से उनका गुणगान करते हुए चौथे दिन अयोध्या पहुंच गए। राजा जनक ने चार दिन वहां ठहर कर सब प्रबंध किए, फिर वे जनकपुर लौट गए। धर्मात्मा भरत ने शत्रुघ्न को माताओं की सेवा का भार सौंपा और गुरु वशिष्ठ से निवेदन किया।
1: गुरुदेव, आपकी आज्ञा हो तो मैं इस अवधि में विशेष नियम का पालन करना चाहता हूं।
2: समुझब करब कहब तुम जोई, धर्म सारु जग होई है सोई।
0: गुरु की आज्ञा पाकर भरत जी ने शुभ मुहूर्त में राम के चरण पादुकाओं को राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया और स्वयं अयोध्या के दक्षिण में स्थित नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। उन्होंने राज सुख छोड़ दिया और तापस वेश धारण कर लिया। अबध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धनु सुनि धन धुल जाई, तेही पुर बसत भरत बिन रागा, चंचरी की जिमी चंपक बागा।

ताग रूपधारी भयभीत जयंत सब कहीं मारा मारा फिरा। ब्रह्मलोक शिवलोक समस्त लोकों में पुकारता हुआ अंत में नारद जी द्वारा प्रेरित वो श्री राम की शरण में ही आया। आतुर और भयभीत जयंत ने श्री राम से अपनी रक्षा की प्रार्थना की, भांति भांति से अपने किए पापों के लिए क्षमा मांगी। श्री राम जी ने उसे अपनी शरण आया जान, एक नयन करी तजा। इस प्रकार चित्रकूट में रहते हुए श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए। वहां से विदा होते समय वे अत्र ऋषि के आश्रम पहुंचे। ऋषि ने श्री राम की अनेक प्रकार स्तुति की।

सीता जी ने विनम्र भाव से अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुया की चरण वंदना की। अनसुया जी ने उन्हें शुभाशीष देकर पातिव्रत धर्म का उपदेश दिया।

विश्राम पाकर ऋषि के चरण कमलों में शीश नवा श्री राम जी वन को चले। उनकी छवि का वर्णन मैं किन शब्दों में करूं। आगे राम अनुज पुनि पाछे मुनिवर बेख बने अति काछे। उभय बीच श्री सोहै कैसी ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। मार्ग में जाते हुए विराद राक्षस मिला। सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। फिर शरभंग मुनि का उद्धार कर श्री राम आगे बढ़े। श्रेष्ठ मुनियों के समूह उनके साथ हो लिए। श्री राम ने आगे चलकर एक विशाल अस्थि समूह देखा। पूछने पर ज्ञात हुआ कि राक्षसों ने सभी ऋषि मुनियों को मार कर खा लिया है। ये उन्हीं की हड्डियों का ढेर लगा है। इससे श्री राम जी के नेत्रों में आंसू छलक आए। ऋषि मुनियों को भयभीत जानकर उन्होंने निश्चरहीन करहु मही भुज उठाई पन कीन सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख दीन। इसके पश्चात आगे चलकर श्री राम जी ने सुतीक्ष्ण की अविचल और निश्चल भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अपने कंठ से लगा लिया। मुनि सुतीक्ष्ण ने श्री राम की इन शब्दों में स्तुति की।

सुतीक्ष्ण की स्तुति से प्रसन्न होकर श्री राम जी ने उन्हें अपनी अविचल भक्ति प्रदान की। फिर वे श्री राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी को लेकर अगस्त्य ऋषि के आश्रम में आए।

दोनों भाइयों ने आदर पूर्वक अगस्त्य जी को प्रणाम किया। उनसे आशीर्वाद और निर्देश पाकर वे पंचवटी के निकट जा पहुंचे। वहां दंडकवन में गृध्रराज जटायु से उनकी भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर श्री राम जी गोदावरी नदी के निकट पर्णकुटी बनाकर रहने लगे।

0: लक्ष्मण जी की जिज्ञासा पर श्री राम ने उन्हें ज्ञान, वैराग्य, माया, ईश्वर, जीव आदि के संबंध में विस्तार से समझाया। भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख का अनुभव किया और प्रभु के चरणों में सिर नवाया। यही विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। तब एक दिन क्या हुआ,
1: सुंदर तनिक इधर तो देखिए।
2: कौन, क्या है?
1: देखिए तो तुम सम पुरुष न मौसम नारी।
2: क्या
1: हैरान न हो, ये संजोग विधि रचा बिचारी।
2: कैसा संजोग?
1: मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखूं खोज लोक तिहु नाही।
2: तो
1: ताते अब लगी रहूं कुमारी।
2: कुमारी?
1: हाँ मनुमाना कछु तुम्हें निहारी।
2: कुमारी उधर देखो, अहि कुमार मोर लघु भ्राता।
1: कुमार
3: सुंदरी सुनो, मैं उन्हें कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा।
1: लेकिन कुमार मैं तो आपको।
3: सुंदरी मैं तो एक छोटा सा सेवक मात्र हूँ, प्रभु समर्थ कोसलपुर राजा, जो कछु करहीं उन्हीं सब छाजा।
1: किंतु तुम्हारे लिए भी तो सब कुछ संभव है कुमार।
3: नहीं सुंदरी, नीति कहती है सेवक सुख चहे मान भिकारी, व्यसनी धन शुभ गति विभिचारी, लोभी जस चहे चार गुमानी, नव दुह दूध चहत ए प्राणी। असंभव, बिल्कुल असंभव।
1: कुमार आप बड़े हैं, आप ही मुझे।
2: नहीं सुंदरी, मेरा छोटा भाई ही उपयुक्त है।
1: कुमार तुम ही मुझे अपनाओ, ऐसा भरपूर यौवन, मोहक सुंदरता, 16 श्रृंगार से सजी हुई ये देह तुम्हारे ही वरण करने योग्य है कुमार।
3: निर्लज्ज तो ही सो बरई, जो त्रिन तोरी लाज परिहरई, चल दूर हो यहां से।
1: देखती हूं, अभी देखती हूं।
2: लक्ष्मण क्या देखते हो?
3: ले ले पापिष्ठे, तेरे लिए यही दंड।
1: भाइयों के रहते मेरी ये दुर्दशा तुम्हें धिक्कार है, तुम्हारे बल और पौरुष को धिक्कार है।
4: आखिर अपनी दुर्दशा का कुछ कारण तो बताओ।
1: कारण? कारण पूछते हो? जाकर राम और लक्ष्मण नाम के उन दो कुमारों से बदला लो।
4: तो क्या?
1: हाँ हाँ, उन्हीं कुमारों के कारण मेरी ये दुर्दशा हुई। राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने मेरे नाक और कान काट लिए, उनके साथ एक सुंदर स्त्री भी है। हे भाई जाओ और उन लोगों से मेरे अपमान का बदला लो।
5: योद्धा युद्ध का बिगुल बजाओ, जाओ और उन दोनों भाइयों को जीते जी पकड़ लो।
2: लक्ष्मण यह कोलाहल सुन रहे? आकाश में उड़ती हुई इस धूल से लगता है कि असुर समूह अपना आतंक दिखाने को आतुर है। वो देखो राक्षसों की भयानक सेना आ पहुंची। भाई लक्ष्मण सीता को तुम पर्वत की गुफा में ले जाओ, सावधान रहना।

0: घन घोर संग्राम हुआ, खर और दूषण मारे गए। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर मायापति श्री राम ने ऐसा कौतुक किया कि शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम समझकर आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। उधर तो राक्षस राम राम कहीं तनु तजहीं पावहि पद निर्माण, और इधर करी उपाय रिपु मारी छन मह कृपा निधान। फिर शत्रुओं के नष्ट हो जाने पर लक्ष्मण जी सीता जी को गुफा से बाहर ले आए। यहां तो पंचवटी में श्री राम ने देवता और मुनियों को सुख दिया, वहां लंका जाकर शूर्पणखा ने रावण को भड़काया।
1: अरे लंकेश, तूने अपने देश और खजाने की सुधि ही भुला दी। करसी पान सोवसी दिन राती, सुधि नहीं तब सिर पर आ राती। क्या तू इतना भी नहीं जानता कि शत्रु रोग अग्नि पाप स्वामी और सांप को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। अरे दशकंधर, तेरे जीते जी मेरी ये दशा।
2: अरे पहले ये तो बता कि तेरे नाक कान किसने काट लिए।
1: हाँ बैठे बैठे क्या पूछते हो, वहाँ वन में जाकर देखो। अवध निपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह वन खेलन आए।
2: तो फिर क्या हुआ?
1: तुम नहीं समझोगे, मैं तो उनके कामों को देखकर समझ गई हूँ कि वे दोनों भाई पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे।
2: अरे तू उन बालकों से डर गई?
1: देखत बालक काल समाना, परम धीर धनवी गुण नाना, अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खलवध रत सुरमुनि सुखदाता।
2: तू उनका नाम तो बता।
1: शोभा धाम राम असनामा,
2: और
1: तिनके संग नारी इक श्यामा, रूप रासि विधि नारी संवारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी।
2: तो क्या राम ने?
1: नहीं, तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनी तब भगिनी करी ही परिहासा।
2: क्या तेरी पुकार किसी ने नहीं सुनी?

0: पुकार खरदूषण ने सुनी। वे अपनी विशाल सेना लेकर मेरी सहायता को आए, लेकिन दोनों भाइयों ने सारी सेना को मार डाला।
1: और खरदूषण?
0: उन राजकुमारों ने खरदूषण और त्रिश्रा को भी मार डाला।
1: उन राजकुमारों का इतना साहस, क्या वे लंकाधिपति की शक्ति को नहीं जानते? शूर्पणखा, जा तू विश्वास

0: पलके नहीं लगी। आखिर यह सब कैसे हुआ? देवता, मनुष्य, नाग और पक्षियों में कहीं भी तो कोई ऐसा नहीं जो मेरे किसी सेवक की भी बराबरी कर सके। फिर खरदूषण कैसे मारे गए? वे भी तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है? तो क्या ये कुमार भगवान का ही अवतार है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और अगर सुर रंजन भंजन मही भारा जो भगवंत लीन अवतारा तो मैं जाए बैर हट करूं प्रभु सर प्राण तजे भवतरं। अब इस तामस देह से भजन तो होगा नहीं, इसलिए मन वचन और कर्म से मेरा यही दृढ़ मंत्र है। और अगर वे मनुष्य के रूप में किसी राजा के पुत्र होंगे तो उन दोनों को संग्राम में जीत कर उनकी स्त्री को छीन लूंगा।
1: रावण इस प्रकार का निश्चय कर अकेला ही रथ पर चढ़कर समुद्र तट पर रहने वाले मारीच के पास चला गया। इधर श्री राम ने एक अन्य ही युक्ति रच डाली। लक्ष्मण जी जब फल फूल कंद मूल लेने गए हुए थे तो श्री राम ने सीता जी से कहा, अब मैं कुछ मनोहर नर लीला करूंगा, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। सीता जी श्री राम के आदेशानुसार प्रभु के चरणों को हृदय में धारण कर अग्नि में समा गईं। किंतु सीता जी ने अपने ही जैसी शील स्वभाव और रूप वाली विनम्र छाया मूर्ति वहां छोड़ दी। लक्ष्मण जी भी इस रहस्य को नहीं जान पाए। इधर तो ये लीला हो रही थी, उधर रावण की मंत्रणा और भय के कारण मारीच कपट मृग का रूप धारण कर पर्णकुटी के सामने होकर निकला। रावण भी वहीं उस वन में जा छिपा था।

0: आर्यपुत्र वो देखिए, वो कितना सुंदर है वो मृग। सोने का शरीर और उस पर जड़ी हुई मणियां, कितना मनोहर है ये हरिण।
1: हाँ, है तो।
0: सुनऊ देव रघुबीर कृपाला, ए मृग कर अति सुंदर छाला। हे सत्य प्रतिज्ञ, इसे मारकर इसका सुंदर चर मुझे ला दीजिए।
1: जैसी तुम्हारी इच्छा देवी। लक्ष्मण।
2: देव, अरे आपने तो परिकर भी कस लिया, धनुष पर बाण का भी संधान कर लिया।
1: लक्ष्मण, सीता की इच्छा है कि मैं उस स्वर्ण मृग को मारकर उसका चर्म इन्हें ला दूं। मैं ऐसा ही करूंगा, किंतु भाई वन में बहुत से राक्षस घूमते रहते हैं, अतः तुम सीता केरी करेहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी।
2: जैसे प्रभु की आज्ञा।
0: लक्ष्मण, लगता है तुम्हारे भाई संकट में है, जाओ तुम शीघ्र ही उनकी सहायता को जाओ।
2: माता, भक्ति विलास सृष्टि लय हुई, सपने हो संकट परे की सोई।
0: ये बातें बनाने का समय नहीं है।
2: लगता है कठोर सत्य को आप समझ नहीं पा रही हैं।
0: और मुझे लगता है कि कायरता ने तुम्हारी बुद्धि और बल को हर लिया है। तुम जाते हो कि नहीं?
2: आपकी आज्ञा से मैं चला तो जाता हूँ, परंतु।
0: परंतु क्या?
2: कुछ नहीं, ये रेखा खींच रहा हूँ, इसका उल्लंघन करने पर आपको कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, स्मरण रखना।
3: नारायण नारायण नारायण।

0: कथा कहानी सुनने में रुचि रखती हो?
1: आपकी कृपा है यतिवर।
0: राजनीति का उपदेश कैसा रहेगा राजकुमारी?
1: आपकी कृपा से वो तो मैं सुनती ही रही हूँ।
0: तब क्या प्रेमालाप?
1: गुसाई जी, आप साधु का वेश धारण किए हैं और इस प्रकार कामी पुरुषों की जैसी चेष्टाएं कर रहे हैं, आपको ये सब शोभा नहीं देता।
0: मुझे उपदेश करती है? मेरे नाम और शक्ति से शायद तू परिचित नहीं है।
1: यतिवर, इस प्रकार दुष्टों की जैसी चेष्टाएं करके आप मुझे भयभीत करना चाहते हैं? मुझे तो आपके साधु होने में ही संदेह है। आखिर आप हैं कौन?
0: ले देख मेरा असली रूप। तेरे सामने लंकाधिपति रावण खड़ा है, तेरी अनंत रूप राशि का भिखारी।
1: अरे अरे दुष्ट, तेरा इतना साहस, खड़ा तो रहे। वो देख स्वामी आ गया।
0: कहां है तेरे स्वामी? आ, इस रथ पर बैठ और मेरे साथ चल।
2: खगपति हुई मम बल जान सहित पति सोई।
0: ओह, ये तो बूढ़ा जटायु है, ये अवश्य ही आज मेरे हाथ रूपी तीर्थ में अपने शरीर का परित्याग करेगा।
3: रावण, मेरी बात सुन। जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो राम रोष पावक अति घोरा होई ही सकल सलब कुल तोरा।
0: अरे बूढ़े जटायु, खैर
4: शायद तेरा काल ही तुझे यहां खींच लाया है।

0: गृध्रराज जटायु को घायल कर रावण सीता जी को ले चला। विलाप करती हुई सीता जी आकाश मार्ग से जाते हुए पर्वत पर बैठे हुए वानरों को देखकर राम जी का नाम लेकर वस्त्रालंकार आदि फेंकती चली गई। रावण ने सीता जी को ले जाकर अशोक वन में रखा। इधर लक्ष्मण जी से सीता जी के संबंध में समाचार पाकर श्री राम जी बहुत दुखी हुए। पर्णकुटी को सीता जी से रहित देखकर वे बहुविध विलाप करने लगे।
1: हा गुणखानी जानकी सीता, रूप शील व्रत नेम पुनीता, तुम कहाँ हो प्राण वल्लभे, तुम कहाँ हो? हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी?
2: तात, विषाद का परित्याग कीजिए, आपके समान धीर पुरुष संसार में दूसरा नहीं है।
1: सुनो जानकी, तो ही बिन आजू, हर से सकल पाई जन राजू।
2: तात, देखिए सारा वन प्रदेश पार कर हम कहाँ आ पहुंचे।
1: राम राम राम।
2: तात
1: राम,
2: इधर देखिए कोई पंख कटा विशाल पक्षी दम तोड़ रहा है।
1: राम, अरे राम, अरे ये तो गृधराज जटायु है। तात, तुम्हारी ये दशा, तुम्हारी इस दुर्गति का कारण कौन है?
3: नाथ, दशा नन ये गति कीनी, तहीं खल जनक सुता हर लीनी।
1: तात, जानकी किधर है, किधर गया है दशानन?
3: ले दक्षिण दिशी गयो गोसाई, बिलपति अधिक कुररी की नाई।
1: उन्हीं के कारण तुम्हारी ये दशा हुई है तात।
3: दरस लागे प्रभु राखे प्राण, चलन चहत अब कृपा निधाना।
1: तात, आप अपने देह की रक्षा कीजिए।
3: नाथ, मरते समय जिनका नाम मुख पर आ जाने से पापी भी मुक्त हो जाता है, सो मम लोचन गोचर आगे, राखो देह नाथ के खा गए।
1: तात, आपने अपने शुभ कर्मों से ही सदगति पाई है, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहु जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तजी तात जाहु मम धामा, देउ काह तुम पूरन कामा।
3: नाथ, ये सब आपकी कृपा है।
1: मेरी एक प्रार्थना है, सीता हरन तात जनि कहु पितासन जाई, जो मैं राम तक कुल सहित कह ही दसानन आई।
0: राम के इतना कहते ही गीध देह तजी धरी हरि रूपा, भूखन बहुपट पीत अनूपा, श्याम गात विशाल भुजचारी, अस्तुति करत नयन भरी बारी। अबिरल भगति मांगि पर गीध गयो हरि धाम, तेह की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। इसके पश्चात दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए और वन की सघनता देखते हुए आगे चले। मार्ग में उन्होंने कबंध का वध किया, उसे गति देकर श्री राम जी भाई सहित शबरी के आश्रम में पधारे।

0: दोनों भाइयों को देखकर शबरी उनके चरणों से लिपट गई। प्रेम मगन मुख वचन ना आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे।
1: प्रभु मेरा अहोभाग्य, आप इस दीन की कुटिया में पधारे। कंदमूल के सिवा इस दीन के पास और है ही क्या? कृपा कर आप यही ग्रहण कीजिए प्रभु।
2: देवी, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट फल हैं। इनके माधुरी के सामने षटरस व्यंजन भी व्यर्थ है।
1: प्रभु कही विधि अस्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मती आभारी। मैं तो बहुत ही पापनी और मंद बुद्धि हूं प्रभु।
2: देव मेरी बात सुनिए, मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूं। जाति पांति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन कुन चतुराई। भगति हीन नर सोई कैसा, बिनु जल बारित देखिया जैसा। और मैं देख रहा हूं कि शास्त्रों में बताई गई जो नौ प्रकार की भक्ति है, वह सब तुम में दृढ़ रूप में विद्यमान है। इसलिए योगियों को भी जो गति दुर्लभ है, वही आज तुम्हें सुलभ हो गई।
1: ये सब आपकी कृपा है प्रभु।
2: देव, अब अगर तुम्हें जानकी का कुछ भी पता हो तो कृपा कर हमें बता दो।
1: पंपा सरही जाओ रघुराई, तहां होई ही सुग्रीव मिताई। सो सब कहे ही देव रघुबीरा, जानत हो पूछो मत धीरा।
0: इस प्रकार शबरी ने नमस्कार प्रभुपद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। श्री राम जी को सारी कथा सुनाकर हृदय में उनके चरण कमलों का ध्यान करके वो योगाग्नि में देह त्याग कर दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई। तदनंतर अनेक कथा संवाद कहते श्री राम जी और लक्ष्मण जी वन की छटा निरखते पंपासर जा पहुंचे। वहां सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम चले गए। तभी नारद मुनि ने सीता हरण की घटना से व्यथित सीता जी के वियोग में व्याकुल श्री राम जी के दर्शन किए।

साहिब अमित वडाई सच्चा सा

जंदे गल लगियां लगियां पैगी राती अंधेरी सजन दे गल लगियां लगियां पैगी राती अंधेरी ओ जान भी दे हुण सोने

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

सरयू नदी के तट पर बसी सुंदर अवधपुरी रामलला की जन्मभूमि। दशरथ नंदन राम जी ने इसी नगरी में अपनी मानव सुलभ बाल लीलाएं की। श्री राम दशानन पर विजय प्राप्त कर जब अयोध्या नगरी पुनः पधारे तो ये जानकर अयोध्या वासियों के आनंद की सीमा न रही कि तारनहार श्री राम अब सदा के लिए यही निवास करेंगे। भक्त जनों और संत जनों की प्रार्थनाओं से रामलला के सर से हर प्रकार की अलाबला टल गई।